0: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
1: पोइ जॾहिं अखियूं फाटी वेंदियूं ऐं चंड बे नूर थी वेंदो ऐं सिज ऐं चंड पाण में मिलाए हिकु कया वेंदा, उन वक़्तु इहो ई इंसान चवंदो त केॾांहुं भॼां, कॾहिं बि न उते का बि पनाह जी जाइ न हूंदी, उन ॾींहुं त तुंहिंजे रब जे आॾो ई वञी बीहणो आहे.

उन ॾींहुं इंसान खे संदसि सभु अॻियों पोयों कयो ॼाणायो वेंदो, पर इंसान त पंहिंजो पाण खे ख़ूब ॼाणे थो, खणी हू केतिरा ई उज़र पेश करे।

कॾहिं बि न, जॾहिं साहु अची लुकीअ वटि पहुचंदो ऐं चयो वेंदो त आहे को टोणो फिरणो करण वारो, ऐं माण्हू समझी वेंदो त इहो दुनिया खां विछोड़े जो वक़्तु आहे, ऐं पिनी पिनीअ सां लॻी वेंदी। इहो वक़्तु हूंदो तुंहिंजे रब ॾांहुं लाॾाणे जो।

0: पर उन नकी सच करे मञो ऐं न निमाज़ पढ़ियाई पर रहंदो कूड़ भायाई ऐं पुठी ॾेई वियो पोइ सीटबो पंहिंजे घर वारनि ॾांहुं हलियो इहा रविश तोखे जुगाए थी ऐं तोलाए ऐं सहाईंदी आहे आओ इहा रविश तुंहिंजे ई लाइक़ु आहे ऐं तोखे ई सूहे थी
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331252576।
6: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: Duma.
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: लीटर महंगो पेट्रोल जो 9 अघ 370 रुपया 80 पैसा आए डीजल जो 9 अघ 398 रुपया 80 पैसा फी लीटर थी वो पेट्रोलियम डिवीजन पारा जारी कल नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोल एंड डीजल जा 9 अघ 11 सितंबर लाए हुंदा हुकूमत पेट्रोलियम लेवी खत्म करण बाबत फैसलो न करे सघी गालिन जे वे दौर दौरान जमात इस्लामी खां वधीक 3 ॾींहनि जी मोहलत घुरी वरती जमात इस्लाम जा लाहौर पिशावर कराची ऐं सखर समेत ॿियनि शहरनि में धरणा जारी आहे हाफिज़ नईमुल रहमान चयो आहे त हुकूमत पेट्रोलियम वज़ारत ऐं आई पी सां ॻाल्हाइण ऐं मोहलत घुरी आहे हुकूमत जो रवैयो दुरुस्त न थियो त लांग मार्च जो ऐलान कयो वेंदो सॾु खां पोइ कारकुन सॼे मुल्क मां निकिरंदा ऐं हुकुमराननि खे पोइ ते धिके छॾींदा वफ़ाक़ी हुकूमत जो 9 सूबनि वारे मामले ते क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बहस करण जो ऐलान पार्लियामेंटी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त सूबनि वारे मामले ते बहस जो असल हंध पार्लियामेंट आहे अक्टूबर में क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट जे इजलासनि दौरान 9 सूबनि वारे मामले ते बहस करायो वेंदो इस्लामाबाद खे धार सूबो ठाहिण ते का बि ॻाल्हि ॿोल नाहे थी राजधानी वारे शहर खे सूबो ठाहिण बदिरां उते हिकु नओं गवर्नेंस मॉडल ठाहिण जूं तयारियूं हली रहियूं आहिनि मीरपुर खास भरसां जमड़ाव केनाल मां निकरंदड़ शाख जो रेगुलेटरी टुटी पियो मुख़्तलिफ़ हंधनि ते घारा शाख में पाणीअ जो दॿाउ पाणी टंडो आदम रोड ते पहुची वियो ॻोठ ज़ाहिदाबाद शेर मोहम्मद थईम ऐं उनड़ ॻोठ में बि दाख़िल ॻोठणनि मूजिबि आपाशी अमलो शाख खे बंदि करण लाइ पहुतल आहे पर नॉन टेक्निकल हुजण सबबि शाख बंदि न पई थिए डीसी मीरपुर खास पारां असिस्टेंट कमिश्नर खे फौरी तौर अमलो वठी शाख खे बंदि कराइण जी हिदायत जेकमाबाद में लेडी कांस्टेबल पारां मुबैना तौर ज़हर पी आपघात जी कोशिश होल्डिंग कैंप ते ड्यूटी दौरान कांस्टेबल ज़ैनब लाशारी मुबैना ज़हरीली शइ पी आपघात जी कोशिश कई पुलिस जो चवण आहे त लेडी कांस्टेबल खे सिविल अस्पताल मुंतकिल कयो वियो जेका अञा ताईं होश में न अची सघी आहे संदसि हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे ऐं उबावड़ो भरिसां गुडू लिंक रोड ते पुलिस ऐं ॾोहारियुनि में मुबैना मुक़ाबले दौरान ॿ ॾोहारी रशीद अहमद मज़ारी ऐं ज़फ़र अली मज़ारी ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार इलाइक़े में चौबोल आहिनि त गुज़िरियल राति उन्हनि ॿिन्ही चोरनि जूं मेहूं चोरी कयूं हुयूं जिन खे उबावड़ो पुलिस गिरफ़्तार करण बाद हाफ़ फिराए कयो आहे
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: अजरक के रंगों से रंगी
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
5: सिंध के दिल से निकली आवाज
6: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
8: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
7: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
7: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
8: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
8: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
0: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
5: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: फोन ते राबतो खिते जी सूरत आल समेत अमन वारन क्वेश्चन ते गालियों ईरानी सरकारी मीडिया मौजूद बिनी अगवाणन खिते में वधंदड़ चिकताण सबब इलाइके जे अमन इस्तेहकाम के लागू खतरन ते गालियों कयूं ईरानी परडे वजीर सऊदी हमुनसिब फैसल बिन फरहान सां बे फोन ते राबतो कयो खिते जी सूरत आल खास तौर ते यमन में थींदड़ वाकियन ते गालियों कयूं हुयूं. यमनी हुसैन बाबल मंदब वेझो फौजी अडे जकर बेट ते कंट्रोल करण जे दावा हुसैन मौजूद बाबल मंदब ते नजर रखण लाइ ठाहियल फौजी अडे ते जकर ते मुकमल कंट्रोल हासिल करे वरितो आहे. हाणे बाबल सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ़ खैरपुर डिस्ट्रिक्ट बार पारां अदालती कार्रवाईनि जो बाइकाट. वकील अगवाणनि चयो त सिंध खे टोड़ण वारी साज़िश खे कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदासीं. सिंध हिकु आहे, हिकु रहंदी. सिंध के विरायण वारन समूरन बयानन जी मज़म्मत कयूं था. कनकोट भरसा हथियारबंदन जो घर ते हमलो, चार जणा जख़्मी. गोठ बादल सब्जोई में हथियारबंदन घर ते हमलो कयो. गोलियूं लॻण सबबि गुलाम मुर्तज़ा, इरशाद अली, मुज़फ़र अली ऐं दलील सब्जोई ज़ख़्मी. इस्पताल मुंतकिल. वाके जो कारण मालूम न थी सघियो. पुलिस पारां जांच जारी. ऐं पोलैंड में 30 खां वधीक रोबोट्स जो एतिजाज. AI बाबति मज़बूत कानून साज़ी करण जो मुतालबो. वारसा में डिजिटल अफेयर्स जी वज़ारत ॿाहिरां 30 खां वधीक रोबोट्स एतिजाज कयो. एतिजाज कंदड़ रोबोट्स जे हथनि में प्ले कार्ड्स ऐं झंडा हुया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाबति कानून साज़ी करण जो मुतालबो कयो.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो.
8: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद.
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी.
7: औलाद जो न थियण. औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे. ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
7: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी. मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी. मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी. जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं. घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी. राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो. टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं. नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा. एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली. राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163.
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी. छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
8: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
8: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4। बाबू भाई बनना मुझे सवार है। बाबू भाई

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकचे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां फोन ते राबतो किते जी सूरत हाल समेत अमन वारनि क्वेश्चन ते ॻाल्हियूं। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि इन्हीं अॻवाणनि किते वधंदड़ छिकताण सबबि इलाक़ाई जे अमन ऐं इस्तक़ाम खे लाॻायो पियल ख़तनि ते ॻाल्हियूं कयूं। ईरानी परदेही वज़ीर सऊदी फैसल बिन फरहान सां बि फोन ते राबतो कयो किते जी सूरत हाल ख़ासि तौर ते यमन में थींदड़ वाकियनि ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। यमनी हुसैन पारां सामुंडी गुज़रगाह बाबत अलमंदब ते कब्ज़ो करण जी दावा आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिबि बाब अलमंदब वेझो अलमरमी फ़ौजी अॾे आहे ज़िक्र बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाब अलमंदब खे बंदि करण जो इख़्तियार बि हुसैन वटि आहे।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रम्प से फोन से राबतो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई जो दरख्वास्त रद्द कई हुई जेका ट्रम्प रद्द कर छी है। ट्रम्प इंतजामिया मूजिब अमेरिका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कद वाशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो ना है।

0: ब्रिया सिटीअ में महीनो अॻु नारीअ जे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल थियण जो इंकशाफ़। जवाबदार मामो थाणे ते पेश। ॻोठ आॾो खान ॾेहो में मसमात नेहा खे घुटा ॾेई क़तल कयो वियो हो। जवाबदार मामे राजा थाणे ते पहुची एतराफ़ कयो त हुन नारीअ खे संदसि वालिद अकरम ॾियाव सां गॾिजी नौजवान अलारिनो सां कारी करार ॾेई घुटा ॾेई क़तल कयो। पुलिस सरकारी मुदत में केस दाख़िल करे वधीक जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी। घोटकी में ॻोठाणे ते तशद्दुद ऐं तज़वील वारे केस में गिरफ़्तार SHO ज़मानत रद्द थियण ते गिरफ़्तार। घोटकी जी अदालत अॻूणे SHO काबिल भयो जी ज़मानत रद्द करे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। पुलिस काबिल भयो खे अदालत मां गिरफ़्तार करे जेल मुंतकिल कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
4: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए FM रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

जुमत उल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

सूबनि जे सरहदनि बाबति क़ौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां ॿ भाङे टे जी अक्सरियत ज़रूरी आहे। ज़ियाउल हक़ जे अठी तरमीम ज़रिए आइन खे तब्दील कयो हो, जंहिंखे दुरुस्त थियणु घुर्जे। सूबनि जे सरहदनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरांगे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं ई अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंधी आवाम सां गॾु बीठल आहियूं। जिमनी होसिन पारां सामुंडी गुज़रगाह बाबति अलमंदब ते कब्ज़ो ख़तम करण जी दावा। आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। जिमनी होसिन मूजिब बाबति अलमंदब वेझो अलमरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़िक्र बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाबति अलमंदब खे बंदि करण जो इख़्तियार बि होसिन वटि आहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप सां फोन ते राबितो करे हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई, जेका ट्रंप रद्द करे छॾी आहे। ट्रंप इंतिज़ामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब खे यमन में हथफनि बाबति ॼाण फराहम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ़ हिन वक़्तु फ़ौजी कार्रवाई जो इरादो न आहे। ईरान जंग ते अमेरिकी नायब सदर जी जेडी वेंस परेशान। अमेरिकी कमांडर्स जेडी वेंस खे खतरनि खां ख़बरदार करे छॾियो। अमेरिकी मीडिया मूजिब जेडी वेंस विच ओभर ऐं यूरोप में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी कमांडर्स सां ईरान जंग बाबति मुशावरत कई आहे। अमेरिकी कमांडर नायब सदर खे आगाह कयो त ईरान जंग सबबु हथियारनि जे ज़खीरनि में वॾी घटिताई थी आहे, जेका सूरत ॻणती जोगी आहे। जेडी वेंस अमेरिकी कमांडर जे ॻाल्हियुनि बाद परेशानीअ जो शिकार आहे।

0: भरिया सिटी में महीनो अग नारी के कारे इल्जाम हेठ कतल थियण जो इंकशाफ। जवाबदार मामो थाने ते पेश। गोठ आडो खान डेहो में मसमात नेहा के घुटा रही कतल कयो वयो हो। जवाबदार मामे राजा थाने ते पहुंची एतराफ कयो त हुन नारीअ खे संदस वालिद अकरम सां गॾिजी नौजवान अलालनो सां कारी करार ॾेई घुटा ॾेई कतल कयो। दादू में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारिजी वियल नादिर जमाली वारे केस जो सिंध हाई कोर्ट फैसलो ॿुधाए छॾियो। वारसनि जी दरख़्वास्त ते 15 अहलकार ख़िलाफ़ केस दाख़िल करण जो हुकुम। 2 DSPs ऐं 3 SHO समेत 15 अहलकारनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल करण जो हुकुम। अॻोणे DSP सुल्तान चांडो, इंस्पेक्टर कुर्बान कमराणी समेत ॿियनि खे नामज़द करण जो हुकुम। 8 महीना अॻु पुलिस ॼाणायो हो त नादिर जमाली ॾोहारी हो, मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में मारिजी वियो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसलनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सिहतमंद मैदो, सिहतमंद ज़िंदगी।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313-086-3163।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: जुमत उल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: हुआ है खात्मा ईमान पर तेरा नूरी, जबी है खुल्द के हूरो कसूर आंखों में। ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत मजहरे गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह का इश्क व इरफान से भरपूर और अजमत व मोहब्बत खुदा में सरशार कलाम समात फरमाए।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा, और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: It's 2 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे. मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी. ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे. ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब खिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे. ये गलत है. मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए.
5: सूबन जे सरहदन बाबत कौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सघे. तरमीम लाइ सूबा असेंबली मां ब भाङे 3 जी अक्सरियत ज़रूरी आहे. जियाउल हक टी तरमीम ज़रिए आइन खे तब्दील कयो हो जंहिंखे दुरुस्त थियण घुर्जे. सूबनि जे सरहदनि में तब्दीली बाबति कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे. सदर बे तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे. कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त जेकॾहिं कौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरीं अहिड़े ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे. सिंध जे माण्हू बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जे आवाम सां गॾु बीठल आहियूं. यमनी होसियन पारां सामूंडी गुज़रगाह बाबति अलमंदब ते कब्ज़ो करण जी दावा. आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो. यमनी होसियन मूजिब बाबल अलमंदब वेझो अलमरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़िक्र बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे. हाणे बाबल मंदब खे बंदि करण जो इख़्तियार बि होसियन वटि आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब जी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी. अमेरिकी न्यूज वेबसाइट मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप सां फोन ते राब्तो करे हुसैन खिलाफ़ कार्रवाई जी दरख़्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द करे छॾी आहे. ट्रंप इंतिज़ामिया मूजिब अमेरिका रुगो सऊदी अरब खे यमन में हथफनि बाबति ॼाण फराहम कंदो. वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ़ हिन वक़्तु फ़ौजी कार्रवाई जो इरादो न आहे. ईरान जंग ते अमेरिकी नायब सदर जे डी विंस परेशान. अमेरिकी कमांडर जे डी विंस खे खतरनि खां ख़बरदार करे छॾियो आहे. अमेरिकी मीडिया मूजिब जे डी विंस विच ओभर ऐं यूरोप में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी कमांडर सां ईरान जंग बाबति मुशावरत कई आहे. अमेरिकी कमांडर नायब सदर खे आगाह कयो त ईरान जंग सबबि हथियारनि जे ज़खीरनि में वॾी घटिताई थी आहे जेका सूरत हाल ॻणती जोॻी आहे. जे डी विंस अमेरिकी कमांडर जे ॻाल्हियुनि बाद परेशानीअ जो शिकार आहे. क़ाइदेआज़म मोहम्मद अली जना जी 78वीं वर्सी. सिंध जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर जे मज़ार काए ते हाज़िरी. भेटा पेश वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त अॼु क़ौम पंहिंजे अज़ीम अॻवान खे भेटा पेश करे थी. क़ाइदेआज़म दुनिया जो हिकु अज़ीम अॻवान आहे जंहिं तारीख़ जो रुख मोड़ियो. वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहम्मद मोहसिन नक़वी चयो आहे त क़ाइदेआज़म क़ौम खे हिकु नज़रियो शऊर ऐं हिकु आज़ाद रियासत ॾिनी. वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त मुल्क जी तरक़ी ऐं खुशहालीअ लाइ क़ाइदेआज़म जे ॾसियल रस्ते ते हलणो पवंदो. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जी 27 सितंबर ते ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी. एडवोकेट जनरल केपीके अदालत में पेश. दरख़्वास्त जे मुख़ालिफ़त पीटीआई ऐं केपीके जे वॾे वज़ीर खे धुर बणाइण जी इस्तदा. चीफ जस्टिस सरफराज डोकर जो केपीके जे चीफ सेक्रेटरी ऐं आईजी खे हल्फी बयान जमा कराइण जो हुकुम. केपीके जे इलाइक़े क़ौम में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन. 4 दहशतगर्द मारिजी विया. मारिजी वियल दहशतगर्दनि में अफ़गान ख़ारजी अब्दुल्ला बि शामिल. ज़रियनि मूजिब मारिजी वियल अफ़गान दहशतगर्द अब्दुल्ला साद वालिद ग़ुलाम फोस ज़ालवी अफ़ग़ानिस्तान जे सूबे लोगर जो रहवासी हो ऐं ख़ारजियुनि सां गॾु कम कंदो हो. मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन संदसि कारोबारी साथी एहसान अनीस शमसीअ खे बि तलब करे वरितो। मेजर शहरयार अकाउंटेंट उमेर खे बि नोटिस जारी। कमिशनर मीरज़ आज़म बैना कर्ज़दार असद अली भट उस्मान बोज़ई ऐं हसन तनोली खे बि नोटिस जारी। अदालती कमीशन जो चवण आहे त आस्ट्रेलिया में हुजण सबबि हसन तनोली जो बयान वीडियो लिंक ज़रिए रिकॉर्ड कयो वेंदो। कमीशन सभिनी फर्दनि खे 15 सेप्टेम्बर ते पेश थियण लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। डेरके में 9 क्लास में पढ़ंदड़ शागिर्द आसिफ समेत जो लेबर कॉलोनीअ मां गोलियूं लॻल लाश ठाहियो आहे। पुलिस चयो आहे त वाकिए जे मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जांच करे रहिया आहियूं। हक़ीक़तूं जांच मुकमिल थियण बाद ई साम्हूं ईंदियूं। नींगर जो ख़ानदान कुझु महीना पहिरियां लेबर कॉलोनी मुंतकिल थियो हो। रियासिटीअ में महीनो अॻु नारी जे कारे इल्ज़ाम हेठि क़तल थियण जो इंकशाफ़। जवाबदार मामो थाणे ते पेश। ॻोठ आडो खान ॾेहो में मसमात नेहा खे घुटा ॾेई क़तल कयो वियो हो। जवाबदार मामे राजा थाणे ते पहुची एतिराफ़ कयो त हुन नारीअ खे संदसि वालिद अकरम सां गॾिजी नौजवान अला ॾिनो सां कारी करे घुटा ॾेई क़तल कयो। पुलिस सरकारी मदद में केस दाख़िल करे वधीक जवाबदारनि जी ॻोल्हा शुरू करे छॾी आहे। दादू में मुबैना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल नादिर जमाली वारे केस जो सिंध हाई कोर्ट फैसलो ॿुधाए छॾियो। वारसनि जी दरख़्वास्त ते 15 अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाखिल करण जो हुकुम। 2 DSPs ऐं 3 SHOs समेत 15 अहलकारनि ख़िलाफ़ FIR दाखिल करण जो हुकुम। अॻूणे DSP सुल्तान चांडो, इंस्पेक्टर क़ुर्बान कमराणी समेत ॿियनि खे नामज़द करण जो हुकुम। 8 महीना अॻु पुलिस ॼाणायो हो त नादिर जमाली ॾोहारियो मुक़ाबले दौरान साथियुनि जी फायरिंग में मारिजी वियो हो। नओं दंबालो में आपाशी सब डिवीजन जे पुछड़े में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। आबादगारनि चयो आहे त 9 सवें एकड़नि ते बीठल फसल पाणी न मिलण सबब सड़ी रहियो आहे। गुज़िरियल 2 महीननि खां जक्स ऐं बघार शाख जे पुछड़े में पाणी नाहे पहुतो। इख़्तियारियूं नोटिस वठनि। घोटकी में ॻोठाणे ते तशद्दुद ऐं तज़लील वारे केस में गिरफ़्तार SHO ज़मानत रद्द थियण ते गिरफ़्तार। घोटकी जी अदालत अॻोणे SHO काबिल भयो जी ज़मानत रद्द करे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। पुलिस काबिल भयो खे अदालत मां गिरफ़्तार करे जेल मुंतकिल कयो। शिकारपुर में जिनसी लड़ाई बाद क़तल कयल शागिर्द जे केस में जवाबदारनि जी सज़ा ॾियारण लाइ शागिर्दनि वारसनि ऐं सिविल सोसाइटी जी रैली ऐं धरणो। मक़तूल 15 सालनि जे शागिर्द मोहम्मद उमर लाशारी जे जवाबदारनि पुलिस अहलकार समद बंगलाणी, अब्दुल जब्बार सेठा, नवाज़ लहर ऐं नदीम।
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
0: सुबह की चार जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मातली आस पास की आवाम अलै खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 बजे शाम ताई। नोट, असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि थईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए FM रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत व ज़वाबित लागू हैं।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि? त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ ख़ुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163। जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सेक्टर जो हुसैन खिलाफ हिन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो न आहे। ईरान जंग ते अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस परेशान। अमेरिकी कमांडर जे डी वेंस के खतरन का खबरदार करे छो। अमेरिकी मीडिया मूजिब जे डी वेंस विच ओभर ए यूरोप में मौजूद अमेरिकी फौजी कमांडर से ईरान जंग बाबत मुशावरत कई है। अमेरिकी कमांडर नायब सदर के आगाह किया ईरान जंग सब हथियार के जखीरन में वही घटताई थी है जी सूरत हाल घटती जोगी है। जे डी वेंस अमेरिकी कमांडर के गाल बाद परेशानी जो शिकार है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की अठहतरी वर्सी सिंध के गवर्नर ए वे वजीर की मज़ार काय से हाजिरी। भेटा पेश वजीर आजम शहबाज शरीफ चो है अज कौम पैं अजीम अगवान के भेटा पेश करे थी। कायद आज़म दुनिया जो एक अजीम अगवान है जै तारीख जो रुख मोड़ो। वफाकी गरु वजीर मोहम्मद मोहसिन नकवी चो तो कायद आज़म कौम के एक नजरियो शऊर एक आजाद रियासत दिनी। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चो तो मुल्क की तरक्की ए खुशहाली लाय कायद आज़म के डसल रस्ते से हलणो पवंद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 27 सितंबर से ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त बुधनी। एडवोकेट जनरल केपी के अदालत में पेश दरख्वास्त मुखालफत पीटीआई केपी के वरे वजीर के दुर बणाने की सजा। चीफ जस्टिस सरफराज रोकड़ जो केपी के चीफ सेक्रेटरी आईजी के हल्फी बयान जमा कराने हुकुम। केपी के इलाके कोर्ट में सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारजी वे दहशतगर्द में अफगान खारजी अब्दुल्ला भी शामिल। जरियन मौजूद मारजी वेल अफगान दहशतगर्द अब्दुल्ला वलिद गुलाम गौस अफगानिस्तान के सूबे लोगर जो रहवासी हो हारजिन से गड कम कंदो हो। मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन संदस कारोबारी साथी एहसान अनीस शमसी के तलब करे वरतो। मेजर शहरियार अकाउंटेंट उमेर के भी नोटिस जारी। कमीशन मीर रजा के मुबैना कर्जदार असद अली भट्ट उस्मान ए हसन तनोली के भी नोटिस जारी। अदालती कमीशन जो चवण है ऑस्ट्रेलिया में हुजन सब हुसैन तनोली जो बयान वीडियो लिंक जरिए रिकॉर्ड कयो वेंदो। कमीशन सभी फर्दन के 15 सितंबर से पेश थे नोटिस जारी कर छिया। तालीम खाते में पीएसटी ए जीएसटी से वेटिंग उम्मीदवार बाबत इजलास तलब। सिंध असेंबली के स्पेशल कमेटी जो बो इजलास 15 सितंबर से इजलास में इंतजार कदड़ उम्मीदवार के भर्ती बाबत फैसला कया वा। सूबाई वजीर सियाउल हसन लंजार सैद सरदार शाह अली खुर्शीद ए बया शिरकत कदा। डेरके में नाए क्लास में पढ़ंदड़ शागिर्द आसिफ समेत जो लेबर कॉलोनी में गोलियों लगल लाश हथाय है। पुलिस है तो वाकई के मुख्तलिफ रुखन का जांच कर रहा हूं। हकीकतू जांच मुकम्मल थियण बाद ही सामू ईद। नींगर जो खानदान कुछ महीना पहरिया लेबर कॉलोनी मुंतकिल थो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: केश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यु छितू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जो छितू पक्यु हुजन त केश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो। सीमेंट जी जाली 9962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो।
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी।

0: राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9 खां 6:30 वगे शाम ताई। नोट असावट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नजद अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल।
3: आई हाँ गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हाँ बुड़ी 331 5576।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे दींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अलीशेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
3: जी हा, 3135525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।
4: सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ जीएफएम 88 नेटवर्क ते।
6: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बरवक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: સુબન જે સરહદન બાબત કોમી એસેમ્બલી આઈની તરમીમ નથી કરી શકે તરમીમ લાય સુબા એસેમ્બલી માં બ ભાંગે ટ્રે જી અક્ષરત જરૂરી આ જાવલક ઠી તરમીમ જરીએ આઈન કે તબદીલ કયો હો જેખે દુરુસ્ત થયણ ઘુરજે સુબન જે સરહદન મે તબદીલી બાબત કોમી એસેમ્બલી તરમીમ નથી કરી શકે સદર બી તરમીમ તે સુબે જી મંજૂરી બિના સહી નથો કરી શકે કરાચી મેં મીડિયા સા ગાલાઈતે વડે વઝીર સૈયદ મુરાદ અલી શાહ ચયો આ તે જેકડે कौमी असेंबली सिंध के विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कर तो सिंध असेंबली पे अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है सिंध के मानून भी पैंजो फैसलो बुधाए छो है असा सिंध के आवाम से गड बीठल आयो वजीर आजम की सदारत हेठ जरई शोबे बाबत इजलास जरई शहर के बरामद लाय घुर्बल कदम खड़ की हिदायत जरई शोबे के बरामदात वधाण लाय माली मदद करण जो भी फैसलो शहबाज शरीफ चो तो पाकिस्तान के जरिए शहर के आलमी मंडी तई रसाई यकीनी बनाने लाय कदम कया वन सूबन सा भी राबतन के बेहतर किया जमनी हुसैन पारा सामुंडी गुजरगाह बाबुल मंदब ते कब्जो करण की दावा आलमी व्यापार में रंडक पैदा थियण जो खदशो जमनी हुसैन मूजिब बाबुल मंदब वेझो अलमरी फौजी अडे ए जकर बेट ते कंट्रोल करे वरतो आहे हाणे बाबुल मंदब के बंद करण जो इख्तियार भी हुसैन वट आहे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वारे सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी है अमेरिकी न्यूज वेबसाइट मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप से फोन से राबतो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द कर छी है ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमेरिका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराहम कन्द वाशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो न है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पैंजे सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरउमीद डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुद्दे ताईं जारी रहण जो इम्कान नाहे क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जिना जी अठहतरी वर्सी सिंध जे गवर्नर ऐं वॾे वज़ीर जी मज़ार क़ाइद ते हाज़िरी भेटा पेश वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त अॼु क़ौम पंहिंजे अज़ीम अॻवाण खे भेटा पेश करे थी क़ाइद आज़म दुनिया जो हिकु अज़ीम अॻवाण आहे जंहिं तारीख़ जो रुख मोड़ियो वफाकी घरू वज़ीर मोहम्मद मोहसिन नकवी चयो आहे त क़ाइद आज़म खे क़ौम हिकु नज़रियो शऊर ऐं हिकु आज़ाद रियासत ॾिनी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त मुल्क जी तरक़ी ऐं ख़ुशहालीअ लाइ क़ाइद आज़म जे ॾिसल रस्ते ते हलणो पवंदो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई जी 27 सितंबर ते ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी एडवोकेट जनरल केपीके अदालत में पेश दरख़्वास्त जी मुखालफ़त पीटीआई ऐं केपीके जे वॾे वज़ीर खे धुर बणाइण जी असदा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो केपीके जे चीफ सेक्रेटरी ऐं आईजी खे हल्फी बयान जमा कराइण जो हुकुम केपीके जे इलाइक़े कोन में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन चार दहशतगर्द मारिजी विया मारिजी विया दहशतगर्दनि में अफ़गान ख़ारिजी अब्दुल्ला बि शामिल ज़रियनि मूजिब मारिजी वियल अफ़गान दहशतगर्द अब्दुल्ला वलिद ग़ुलाम कोस अफ़गानिस्तान जे सूबे लोगर जो रहवासी हो ख़ारिजियुनि सां गॾु कम कंदो हो मीर रज़ा केस जे जांच कंदड़ अदालती कमीशन संदसि कारोबारी साथी एहसान अनस शमसीअ खे बि तलब करे वरितो मैनेजर शहरियार ऐं अकाउंटेंट उमेर खे बि नोटिस जारी कमीशन मीर रज़ा जे मुबैना कर्ज़दार असद अली भट उस्मान बोज़ई ऐं हसन तनोली खे बि नोटिस जारी अदालती कमीशन जो चवण आहे त ऑस्ट्रेलिया में हुजण सबबि हसन तनोली जो बयान वीडियो लिंक ज़रिए रिकॉर्ड कयो वेंदो कमीशन सभिनी फर्ज़नि खे 15 सितंबर ते पेश थियण लाइ नोटिस जारी करे छॾिया तालीम खाते में पीएसटी ऐं जीएसटी वेटिंग उमेदवारनि बाबति इजलास तलब सिंध असेंबली जे
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी ये yeah!

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अव्हां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
1: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई। नोट असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुशखबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
9: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हाँ, 2315-25-7086।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
1: करो छो।

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वाले सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एग्जेविस मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन से राबो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जका ट्रंप रद्द कर छी है। ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो ना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग पंजे सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरोमेंद। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुद्दे ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे।
1: राहुल हक ने आठवीं तरमीम में आईन को बदला और उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है, उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में दो तिहाई असेंबली के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक टू थर्ड मेजोरिटी से कोई सुबह उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
0: सूबन के सरहदन बाबत कौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी कर सके, तरमीम लाए सूबाई असेंबली में बभांगे टे की अक्सरियत जरूरी है। जियाउल हक अठी तरमीम जरिए आईन के तब्दील कयो हो जैंखे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबन के सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी कर सके, सदर भी तरमीम से सूबे की मंजूरी बिना सही नथो कर सके। कराची में मीडिया से गालाइंदे सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो जैसे कौमी असेंबली सिंध के विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कयो तो सिंध असेंबली पहरे ही अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है। सिंध के मानून भी पैं फैसलो बुधाय छो आवाम से गड बीठल आयू। वजीर आजम की सदारत हेठ जरई शोबे बाबत अहम इजलास, जरई शयन की बरामदात लाए घुर्बल कदम खण की हिदायत। जरई शोबे की बरामदात वधायण लाए माली मदद करण जो भी फैसलो। शहबाज शरीफ चयो तो पाकिस्तान की जरई शयन की आलमी मंडी ताई रसाई यकीनी बनाने लाए कदम खाया वन सूबन सा भी राबतन के बेहतर कर वे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई की 27 सेप्टूबर से ऐलानियल लॉन्ग मार्च खिलाफ दरख्वास्त बुधनी एडवोकेट जनरल केपी अदालत में पेश, दरख्वास्त की मुखालफत। पीटीआई ए केपी के वडे वजीर के धुर बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी ए आईजी के हल्फी बयान जमा कराने जो हुक्म। पीटीआई वफद जी मौलाना फजल रहमान से संदस रहायशगाह से मुलाकात, पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर असद कैसर ए बेन मुलाकात कई। हुकूमत मुखालिफ तहरीक ए पीटीआई की इस्लामाबाद में ऐलानियल धरने से गाल बोल। बैरिस्टर गोहर चयो तो एहतजाज जो फैसलो रुगो पीटीआई जो न पर अपोजिशन जो है, सब जमायतू शरीक थींदियूं।

सिंध असेंबलीअ जे इजलास दौरान एमपीएस जूं बिजलीअ जी बंदिश जुदाहूं, सिंध हुकूमत खां नोटिस वठण जो मुतालबो। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो त सिंध सां रुगो बिजली न पर गैस, पाणी ऐं मोटरवेज़ में बे ज़्यादती थी रही आहे। सभई जमायतूं हिन मामले ते इतफ़ाक़ कनि। समूरनि वज़ारतुनि खे हिते घुरायो वञे। पार्लियामेंट वटि अख़्तियार मौजूद आहे। स्पीकर अवेस कादर शाह जो चवण हो त 23 सेप्टेम्बर ते समूरनि बिजली कंपनियुनि जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव खे हिते घुरायो वञे। घरू वज़ीर वेठो आहे, जेकॾहिं अमलदार न अचनि त अव्हां खे तकलीफ़ ॾींदासीं। कमेटी जे इजलास में सभिनी लाॻापियल आफ़ीसरनि खे घुरायो वञे।

0: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
1: मातली है आस पास की अवाम अलै खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वट लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-32-41-230।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
8: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
8: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03132525786।
8: जी हाँ, 03135525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क,
8: सिंध जो आवाज़।

गई। तो जनाब नौजवान नस्ल उसको कहां से कहां लेके जा रही है, क्या कर रही है, ये तो आप हमें बताएंगे फोन कॉल करके। और कुछ हम रोशनी डालेंगे जनाब 03000113488 हमारे नंबर है। तो क्यों ना हम शो का स्टार्ट लें अपने एक जबरदस्त से कौमी नगमे से। हम प्ले कर चुके हैं जनाब एक बहुत जबरदस्त सा कौमी नगमा हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसे यकीनी तौर पर आप सुने और इस कौमी नगमे के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए GFM 88 नेटवर्क पर आपके अपने शो आई लव यू ऑल में। तो हम वापस आते हैं इस मिली नगमे के बाद।

0: दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है, तेरा एहसान। बिल्कुल जनाब, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का ये एहसान है कि उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान जैसा एक अजीम मुल्क बनाया और आज हम उसमें सांस ले रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आज कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह आज हमारे दरमियान मौजूद होते तो वो हमसे क्या कहते। शायद वो हमसे कहते, अपने मुल्क से मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं, अपने किरदार से करो, ईमानदारी इख्तियार करो, अपने फराइज अदा करो, कानून का एहतराम करो, दूसरों के हकूक का ख्याल भी रखो, तालीम हासिल करो और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार जरूर अदा करो। तो जनाब, ये सारे सवाल होते जो कायदे आजम हमसे जरूर कहते, और एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ अच्छा इंसान, एज अ प्योर पाकिस्तानी, एज अ सच्चा पाकिस्तानी, हम लोग भी अगर अपने आप से ये सवाल करें कि हम ये सब चीजें कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो हमें करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो हमें इनको दूसरों तक फैलाना चाहिए, और प्योर पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये सब चीजें दिल से करनी चाहिए। तो जनाब, हम लेते हैं शो की कॉल्स और साथ साथ आपको शामिल प्रोग्राम भी करते हैं और आपसे कुछ सवाल भी करते हैं। 03000113488 हमारा नंबर है, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ साथ कौन आने वाले हैं। आप हमें कॉल कीजिए 03000113488 और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही, आई थिंक। चलिए जी, कोई गल नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, शाम के 7 बजे तक हम आपके साथ हैं, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ साथ रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी कॉल लें और आपको शामिल प्रोग्राम करें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम,
1: हेलो,
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
1: जी। जी वालेकुम सलाम।
0: अदा केर पे आगल हायो, कितना पे आगल हायो
1: जी? मेहरापुर
0: का केड़ो शहर भा?
1: खुर्शीद
0: अली शहर साहब, केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो सफा?
1: दुआओं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अदा आज असा कायदे आजम डे जे हवाले से तमाको कुछ पूछना चाहूं था, पूछी सकूं था बा? अदा अज कायदे आजम जो है डे मल्हायो पियो वञे, अज कायदे आजम जो इंतकाल थियो, असां खे पाकिस्तान जेड़ो अजीम मुल्क दिनो आहे, त असां इन अजीम मुल्क में छा था कयूं उन जी तरक्की जे लाइ, उनखे संभालण लाइ?
1: तकरीबन असां ॾिसूं पिया त वॾनि वॾनि कॉलेजनि में माना पाण पढ़नि पिया, कोशिशि पिया करे इंसान त हुननि जेको पाण सिखियो आहे उहो माण्हू ॿियनि खे सेखारे,
0: ॿियनि खे बि ज़रूर फैलाए हुन इल्म खे, ऐं जेको आहे सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं करे पाकिस्तान
1: में डेली तालीम करे।
0: एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली,
1: उहा माना असांजे इस्लाम में तमामु घटि थी वियो आहे, उहा असांजे तकलीफ़ ज़रूर हुनजी ॼाण हुजे।
0: बिल्कुलु, तालीम त तालीम आहे, दीनी बि तालीम आहे, दुनियावी बि तालीम आहे, इहा ॿई तालीम असां पंहिंजे ॿारनि खे जेको आहे हासिल करण ते ज़ोर ॾियूं, ऐं सख़्ती कयूं हुन ते, हुननि खे इहा तालीम ज़रूर हुजे।
1: हा बिल्कुलु, चलो क़ुरान जी तालीम लाज़मी आहे,
0: बिल्कुलु बिल्कुलु, छो त पाकिस्तान जेको आहे इस्लाम जी बुनियाद ते ठहियो आहे, त इहा त ज़रूरी आहे असां सभिनी लाइ जाए, त दीनी बि तालीम ऐं दुनियावी तालीम ज़रूर ॾियारियो पंहिंजे ॿारनि खे। बिल्कुल बिल्कुल, उनके खराज तहसीन पेश कयूं, उन्हनि जे ख्वाबनि ते अमल कयूं, उन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते अमल कयूं, त इहो ई वॾी ॻाल्हि हूंदी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, त बिल्कुल शर साहब, इहो ॿुधायो अॼु तव्हां गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था, तव्हांखे उहा गाना तव्हांजी फरमाइश ते
1: ॿुधाईंदासीं।
0: कहिड़ो?
1: हिकु अलाह कनू में डहंदी, हिकु मौला कनू में डहंदी।
0: वाओ, थोरो गुनगुनाए ॾियो आहे त वरी चाल चंड लॻी वञे।
1: गुनगुनायो?
0: हा गुनगुनायो, अगरि गुनगुनाइण चाहियो था त।
1: अच्छा
0: जी, हलो भले असा पाने पांचा कान बंद करे छा कोई मसो ना
1: जी
0: तुम माशाल्लाह काफी सुरीला आयो ताजी आवाज का खबर पैजी थी पर तुम्हें ये गानों बुधाइस केंद्र नाले से करना चाहो
1: सब का पे बाबन साहब गया गुरु टीम गया
0: जी जी
1: जेके दोस्त बुधी आया मुझे बड़ा सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच हमारे साथ जनाब शर साहब असा सभी से गुड शर साहब जो तमाम घड़ी सुठी गाल पे करे असे बार इो दीनी भी तालीम जो है दियण खपे दुनियावी तालीम भी दियण खपे तो यहां तमाम घड़ी सुठी गाल कई असा शर साहब जो मेरापुर का हो तो हाँ दिसो सभी से गड लाइन से केर है तुम भी असा कॉल कर सो 03000113488 जी तीन फरमाइशों भी पूरी कराए सो शो में पार्टिसिपेट भी कर सो السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیر اسا سبنی سنگر مجا جانی محمد علی صاحب کیڑا حال چال تا ٹھیک ٹھاک ہے ہو
1: محمد علی جروار
0: امار پاوے نے سگنل کے محمد حنیف محمد عزیز جروار سوری
1: جی
0: اوکے اوکے محمد عزیز جروار صاحب کیڑا حال چال ہیں ٹھیک ٹھاک ہے ہو सफा सफा मस्त मौला तुम यू बुधायो त पाकिस्तान कदी आजाद थे वाओ ग्रेट यार जबरदस्त अड़ा पाकिस्तानी मुख्य वणंदा आन जैके तमाम सुठा सुठा सवाल जा जवाब भी इंदा तमाम माशाल्लाह एक जबरदस्त पाकिस्तानी आयो तो यू बुधायो पाकिस्तान की तरक्की तरवीज लाए असा सबनी के छा करण खपे जबरदस्त जबरदस्त रात दी मेहनत करनी खपे तमाम छा कंदा आयो अदा माशाल्लाह माशाल्लाह ताजा भाईर आई बार बार आन तारीम हासिल कन था जबरदस्त माशाल्लाह प्राउड ऑफ यू आयो बुधा आपदा प्रवीण प्ले तो क्या कैसे नाले से करना चाहो कड़ो कड़ो शमन जो माइन के बाद बुधाइंदुम अब बड़े मरिया से वाह वाह वाह वाह यो तमाम घणो खतरनाक गानो आ बुधाइन मा ता के पर यो गानो हने केन जे नाले करना चाहो
1: ये काली क्लाचारी है प्रधान शास्त्र के लिए रायल शरीफ है और तने की भेण बनला सारे की बनला जे नाले गानो भी गानो बुधरंगे
0: से इंशाल्लाह मुजा प्यारा भाता के गानो जरूर बुधाना से असब ले कर चुका हूं जबरदस्त ट्रैक एक अल्लाह कलू में दर्दी एक मौला कलू में दर्दी बुधाई खोर सारो एंजॉय के

0: पड़ जाती घटोली, आलू तू मर जाती घटोली।
1: It's 5:30 p.m. This time check.

0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
2: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
2: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
2: जी हाँ, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: करें तो यकीन जानिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर एक तालिबे इल्म हैं तो मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें। आप कारोबार करते हैं तो ईमानदारी से कारोबार करें। आप लाजमत करते हैं तो अपना काम जिम्मेदारी से करें। आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो मजबूत चीजें फैलाएं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा जो है फास्ट हो गया है और जनाब हर एक की पहुंच में हो गया है। तो अगर हम लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज उसका अगर मस्बत इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा प्रचार, अच्छा काम, अच्छा कर्मा सब दुनिया के सामने आएगा और लोग उसे पॉजिटिवली लेंगे। लेकिन अगर हम छोटी चीजें बगैर तहकीक के और बगैर कुछ सोचे समझे आगे शेयर करेंगे तो वो शेयर उतर जाएंगी और फिर क्या होगा कि वो एक नेगेटिविटी फैल जाएगी, एक नेगेटिव प्रोग्राम पूरी दुनिया के आगे जाएगा, एक नेगेटिव पैगाम दुनिया के आगे जाएगा, एक नेगेटिव बात दुनिया के आगे फैल जाएगी और हम लोग फिर सिर्फ देखते रह जाएंगे। तो अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो प्लीज थोड़ा सा सोच समझ के किया करें। पाकिस्तान की खिदमत सिर्फ सरहद पे नहीं होती दोस्तों, एक अच्छा उस्ताद भी पाकिस्तान की अच्छी खिदमत कर सकता है। एक ईमानदार डॉक्टर, एक जिम्मेदार सहाफी, एक मेहनती मजदूर, एक बाकिरदार तालिबे इल्म सब पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं और कर भी रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। तो जनाब हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपना कितना किरदार डाल रहे हैं। तो जनाब इस शो में आपका किरदार तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत प्यारा सा किरदार है जो कि आप अपनी जिंदगी में निभा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह आप अपनी जिंदगी में तमाम जितने भी आपको किरदार मिले, जितना भी आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले कहीं पर भी अच्छे कामों में, तो आप जरूर कीजिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अपना किरदार निभाते हुए हमारे शो में हकीम मसूद अहमद जमाली साहब, नूर मोहम्मद लाशारी साहब कंदकोट से, मोहम्मद बिलाल जमाली साहब कामरान जमाली, गोल्ड बचर शाम यानी सखर से, अमां जो प्रोग्राम पसंद कयूं था जिशान रोकड़ी जी आवाज में, सोनिया अखा बुधायो। बिल्कुल जनाब तमाम लास्ट टाइम भी फरमाइश कई पर मां पूरी कोन करे सघियम, इनशाला तला हीरी मां तव्हांखे गानो ॿुधाईंदुमि सोनिया अखा बाय जिशान रोकड़ी। थैंक यू हकीम मसूद अहमद जमाली साहब, नूर मोहम्मद लाशारी साहब कंदकोट खां, मोहम्मद बिलाल जमाली, कामरान जमाली, गोल्ड बचर शाम यानी सखर खां। तो जनाब इसके बाद हमारे साथ हैं आशिक अली चांडू साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, सलाम टू ऑल माय मी क्वेटा से। ओके जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मैसेज किया है। जनाब आशिक अली चांडू साहब आपने क्वेटा से मैसेज किया है, तो आप हमें ये बताइए कि क्वेटा का हालचाल कैसा है, क्वेटा में कोई गर्मी वर्मी कम हुई और सर्दियों का सीजन कोई शुरू हुआ, बर्फबारी का क्या सीन है, सब कुछ हमें बताइए आशिक अली चांडू साहब। थैंक यू सो मच, आपके तमाम दोस्तों तक आपके सलाम पहुंच गए हैं। अब्दुल रजाक साहब हैं, मोहम्मद खान कुंभार, सोना बेवफा, जमाल कुंभार, सरदार मोहम्मद अली कुंभार, हली पोट्रा स्टाफ खान, शो इज वेरी नाइस, हिन वक्त तमाम जो प्रोग्राम मेले अच्छा मेले एंजॉय मिली एंजॉय क्यों था। ओके गुड यार, आई गॉट इट, मिली एंजॉय क्यों था दोस्तन सागर। थैंक यू सो मच अब्दुल रजाक साहब। इकबाल लगारी साहब ऐसा सबनी सागर मौजूद है, विलेज सोनू खान लाशारी बीरपुर खास से सुन रहे हैं, अशफाक भाई नाइस शो, थैंक यू इकबाल लाशारी भाई, लव यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखियेगा। नजीर खोसो सोबतपुर बल्तिस्तान से हमारे साथ हैं, ये कहते हैं ये मत देखो कि कोई तुम्हारे साथ मुखलिस है या नहीं, अपने आप को जो है हर रिश्ते के साथ मुखलिस और ईमानदार रखो, अगर कोई तुम्हारे साथ मुनाफकत या धोखा करेगा तो इसका सिला रब से पालेगा और तुम्हें तुम्हारी इखलास और सच्चाई का जवाब और अजर भी अल्लाह ताला ही अता करेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने और पॉजिटिव बात की, और हम चाहते हैं किसी तरह की पॉजिटिव बातें जो है आप हमारे साथ करते रहें। थैंक यू सो मच, हमें याद करते हैं आप और जो है हमारे साथ आके इतने जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, 5 से 7 तक आप हमारा साथ निभाते हैं। तो जनाब 5 से 7 तक आप हमारा साथ निभाते रहिए, और अगर हमें SMS आप करना चाह रहे हैं तो जनाब 8881 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टाइप SKR अपना स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और सेंड इट टू 8881। अब हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, हमारे शो में कॉल भी कर सकते हैं। जनाब सारे के सारे हमने आपको जो है अथॉरिटीज दे दी हैं कि किसी भी तरीके से आप हमारे साथ पहुंच जाए और हमारे शो में पार्टिसिपेट करें। जनाब इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी अथॉरिटीज आखिर देता कौन है, हम देते हैं आपको। बिल्कुल जनाब GFMHT नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपको हम अलाउ करते हैं कि आपको SMS आता है तो आप SMS करें, आपको कॉल कर सकते हैं तो आप कॉल करें, आप हमारे फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जनाब। तो ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप हमारे साथ बदरजा अदब मौजूद हों और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करें। खैर जनाब कॉल मिलाने के लिए हमारा नंबर एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए 03000113488। और जनाब इसके साथ साथ सखर की गर्मा गर्मी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कुछ कम हुई है, और जनाब कम होगी तो सर्दियां आएंगी और सर्दियों की थोड़ी थोड़ी सी खुशबू भी आ रही है मुझे कि सर्दियां अब पहुंचने वाली हैं और गर्मियां अबाउट टू एंड है। तो 38 सेंटीग्रेड आज का दर्जा हरारत है जो कि हम आपको बता रहे हैं कि सखर का। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम साईं
0: पेर ते हथ साईं साईं साईं दिल ते हथ रखी तव्हां खे भई हथ बधी करे अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह सब ए वन आहिनि तव्हां ॿुधायो पंहिंजो नालो किथां पिया ॻाल्हायो केरु पिया ॻाल्हायो अमीर बख्श साहब कहिड़ा हाल चाल आहिनि मिस्त्री गोठ खां
1: सभु ख़ैर लॻो पियो
0: अच्छा मिस्त्री गोठ मिस्त्री गोठ आहे
1: हा मिस्री गोट मंगनार
0: माशाल्लाह माशाल्लाह उते सभु मिस्त्री जहिड़ा माण्हू रहनि था तव्हां जहिड़ा वाह वाह वाह जबरदस्त जबरदस्त अच्छा इहो ॿुधायो छा पियो चाहियो त गर्मी तव्हांजे वधीक आहे
1: गर्मी असांजे वधीक आहे राति जो थधि थींदी आहे बाक़ी कराची सांगड़ मुल्क थधो थी वियो आहे तोखे छा ॻाल्हि ॿुधाई
0: अरे यार तव्हां त मिस्त्री जहिड़ा माण्हू आहियो तव्हां त भला गर्मी छो थी पए हेॾी
1: बस अलाह साईं ख़ैर कंदो बसि अलाह ख़ैर टे पंद्रहं ॾींहंनि त मौसम सही थी वेंदो उहो नसीब जी ॻाल्हि
0: आहे नसीब जी ॻाल्हि आहे बिल्कुलु अलाह साईं कंदो त थधि थी वेंदी छो त राति अलाई थधि हूंदी आहे माशाल्लाह ऐं मौसम जेको आहे सर्दी जो अचण वारो आहे दिलि जाइ कयो बिल्कुलु
1: बिल्कुलु
0: इहो ॿुधायो अदा साईं मुंहिंजा प्यारा भाउ त गानो हाणे ॿुधायां थो सोणी अखीं छो त असां खां हिकड़ी लिसनर फरमाइश कई आहे हकीम मसूद जमाली साहब पोयां बि प्रोग्राम में फरमाइश कई असां न हलाए सघियासीं हाणे चऊं हुन जा दिलि नथा टोड़े हुन जो
1: अलाह दाद मार मोहम्मद अली मार पठान खान पटकेर अब्दुला भंगार चंद में पोपट पिटे मोर पिता जी
0: अच्छा बस
1: ओके
0: ओके मुझे प्यारा तो जनाब हम गाना प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा सोनिया किया इस गाने को सुनिएगा सुंदरीगा जी एफ एम एटी एट नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद अशफाक नियाज़ी।

0: हेलो
1: जी जनाब, हमारे साथ आ तो गए हैं हमारे भाई, और पर ये बात बात क्यों नहीं कर रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कॉल दी एंड हो गई है, पर कोई बात नहीं, एक और आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया हेलो, चलिए जनाब, लगता है मुझे हेलो हेलो में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं जनाब कि ये कि आपको सुनाते हैं गाना, और गाना है शीशे का दिल मेरा, और इसने तोड़ दिया, पत्थर से तोड़ दिया कि पता नहीं किस चीज से तोड़ दिया। सुनते हैं और एंजॉय करते हैं।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ये बहुत गलत तरमीम थी. ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे. ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे. ये गलत है. मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए.
4: सूबन की सरहदों बाबत कौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सके. तरमीम लाए सूबाई असेंबली में ब भांगे टे की अक्सरियत जरूरी है. जियाउल हक अठी तरमीम जरिए आइन के तब्दील किया हो जैसे दुरुस्त थियण घुर्जे. सूबन की सरहदों में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके. सदर भी तरमीम से सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके. कराची में मीडिया से गालाइंदे सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो तो जैसे कौमी असेंबली सिंध के विरहांगे बाबत को ठहराव मंजूर कर तो सिंध असेंबली पेरे ही अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है. सिंध के मानून भी पैंजो फैसलो बुधाए छो है. असा सिंध के आवाम से गड बीठल आयू.

टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटताई रेंजर्स जे कार्रवाइयुनि जो नतीजो आहे। पाबंदी मरियल तंज़ीमनि जूं सरगर्मियूं ऐं रुपोश जवाबदार सिक्योरिटीअ लाइ ख़तरो आहिनि। अमुन अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी तमामु ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में हिकु साल जे वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशननि में अहम किरदार अदा कयो आहे। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 19 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़रर रहंदी।

सिंध असेंबली जे मेंबर्स जो सूबे में बिजली जी बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ़ एहतजाज। स्पीकर अवेस कादिर शाह समूरन बिजली कंपनीज जे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 23 सेप्टेम्बर ते कमेटी इजलास में घुराइण जी हिदायत करे छॾी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन चयो आहे त लोड शेडिंग पाणी बिजली वारी वज़ारत जी नाअहली ऐं पाकिस्तान में गवर्नेंस जी नाकामीअ जो आला तरीन मिसाल आहे। हेस्को सेप्को ऐं के इलेक्ट्रिक जहिड़ा इदारा अवाम खे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण में नाकाम थी चुका आहिनि। सिंध में 18 कलाक बिजली बंदि कई वञे थी। इहो मसइलो क़ौमी असेंबली ऐं सेनेट में बि भरपूर अंदाज़ में उथारियो वञे। रुगो बिजली न पर आवाम खे गैस ऐं पाणीअ जा मसला बि दरपेश आहिनि। स्पीकर बिजली कंपनी जे सरबराहनि खे घुराइण जी हिदायत कंदे घरू वज़ीर खे चयो त हुन ते अमलदार न आया तव्हांखे तकलीफ़ ॾींदासीं।

सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवा इंतजामी यूनिट्स ठाहिण खिलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं हमेशा हिकु ई रहंदी। ॿोलीअ जे बुनियाद ते नफ़रतुनि खे हथी न ॾिनी वेंदी। कराची खे सूबो ठाहिण ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जो माज़ी लसानी बुनियादनि ते ॿधल आहे। जमात इस्लामी जे मेंबरनि जो ज़मीन जे मामले ते एहतजाज, डेस्क ते बीही सख़्त नारेबाज़ी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ऐं डेप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद इजलास छॾे रवाना थी विया। मुर्तज़ा वहाब जो चवण हो त ॿुधायो वञे त नूर उल हक़ इदारो कंहिंजी ज़मीन ते ठहियल आहे, हीअ उहा मुनाफ़िकत आहे जंहिं ख़िलाफ़ आहियां। मुनाफ़िकत खे वाइको कयो वेंदो। यमनी हुसैन पारां सामूंडी गुज़रगाह बाबुल मदब ते कब्ज़ो करण जी दावा, आलमी वापार में वॾी रंडक पैदा थियण जो ख़दशो। यमनी हुसैन मूजिबि बाबुल मदब वेझो अल अमेरी फ़ौजी अॾे ऐं ज़कर बेट ते कंट्रोल करे वरितो आहे। हाणे बाबुल मदब खे बंदि करण जो अख़्तियार बि हुसैन वटि आहे।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वे सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एग्जेविस मूजिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन तो राबतो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जेका ट्रंप रद्द कर छी है। ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब के यमन में हथफन बाबत जान फराम कंदो। वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो ना है। अमरीकी सदर ईरान जंग पंजी सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरो में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघी मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान नाहे।

0: मातली आस पास की आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316 3।
1: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहा आयो,
1: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 0331-2525-786।
1: जी हा, 2311-2525-786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: 6:30 PM. This
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 02-347-32-41-230।
8: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ, گوٹھن شہرن ای پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون ای پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 03125252786
5: جی ہاں 2315525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
5: سندھ جو آواز

0: हमारे फेसबुक पेज पर जाकर और हमारी पोस्ट के नीचे जनाब कमेंट भी कर सकते हैं, जो कि हम रीड कर रहे हैं, आपकी फरमाइशों को प्ले कर रहे हैं। और जनाब हमारे और आपके साथ में बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं और हम चाहते हैं कि ये लम्हात बहुत अच्छे तरीके से गुजरें और आप इन लम्हात को और हम इन लम्हात को बहुत ज्यादा इंजॉय करें। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम प्यारा भाई साहब, हाल वाला?
0: ठीक ठाक मुझे प्यारा भाई। आई थिंक कुर्बान साहब असा सबनी संगत है।
1: आसिफ अली चाचा
0: दे बार हां आसिफ अली चाचा साहब केड़ा हाल चाल है दा?
1: प्यारा भाई आज प्रोग्राम दती रहे आयो लड़काने
0: वा लड़काने मां भला लड़काने वाला इतनी देर छो कई आ मुसा गद चण में शो में असने सेल में को फॉल्ट कोने दा आने ठीक थी वा
1: जिंदगी गुलजार प्रोग्राम न चले छादे करे
0: न तो ले मुके तो सफा खबर ही कोने तो हले तो ले न तो ले मां पूछा कदम
1: आप जी रुखसार प्रोग्राम न थी करे।
0: अच्छा आज जी रुखसार प्रोग्राम न थी करे त मां दिसा तो त छो न थी करे मुके बिल्कुल भी खबर न है इन वाले सा
1: तेरा बाद जो पांग नाव कम से रखा साई आप दली चौड़ यो लार करे में हिकड़ो घंटो प्रोग्राम न छिड़े देने आप घंटा प्रोग्राम न छिड़ करा जवानी मेहरबानी थी।
0: हाजिर साई हाजिर ताजो जो को आई फरमाइश रखें तो इंशाल्लाह ताला असा ताला ये कराइंदा से बस कुछ नहीं उनके करण दियो तो इंशाल्लाह ताला ताजी फरमाइश भी पूरी करदा से इंशाल्लाह
1: बेहतरीन।
0: हाँ जबरदस्त असाजा जिका भी जीएफएम 88 ते असाजा प्रेजेंटर इंदा भले कहड़े भी स्टेशन जा तमाम घना जबरदस्त है तमाम घना आला आहिन
1: प्रोग्राम तमाम बेहतरीन।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तुम सुी गई मैं ये बुधाया था ताकि हिंसर गानों तो प्ले क्या न रहंदुस तू न रहंदे मां कहे नाले से करना चाहो कड़ो
1: रिश्ता
0: हलो ठीक है मारे साथ वो
1: मुझे कद दोस्त बदलदा
0: जी जी
1: वफा अब्दुल भाई कटे जय दली कटमर वास्ते खाली दुखती है प्यारो भाई साहब ने अभी है बाबर अली के
0: साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अदा पांचो खास ख्याल रख जो थैंक यू। हमारे साथ है लड़काना से बहुत प्यारे से भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। और आप देखते हैं हमारे साथ लाइन शाइन पे कौन आने वाले हैं। हाँ आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक की फीड आ रही है हमारा जो है फ्लायर आ रहा है प्रोग्राम का वहां उसके नीचे जाके आप मैसेज की सेक्शन में जाके मैसेज भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिठड़ा केड़ा हाल चाल है जी जी केर पे गलायो कितना पे गलायो
2: गुलाम शहर
0: गुलाम रसूल शाह साहब कितना केड़े शहर माओ केड़े गोठ माओ
2: गुलाम नबी शहर
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह शहर साहब यो बुधायो तो ताकि समझो प्रोग्राम के लगन दो आप
2: वेरी गुड तमाम
0: शहर साहब चाक छा कंदा आयो ताकि केड़ो कमकार कंदा आयो अच्छा अच्छा अच्छा मां हींअर गानो तो बुधाया मुमताज लाशारी जो कहें जे नाले था करण चाहियो ताजी फरमाइश कहड़ी
2: आहे
0: हा मुमताज लाशारी जो हलायां थो कंहिंजे नाले था करण चाहियो जी जी शेर साहब हेलो हेलो ओके मुझा प्यारा भाई थैंक यू सो मच तुम खास ख्याल रखो शेर साहब असा सभी सा गड हो जनाब हाँ वो शो की भी कॉल दिसूँ था असा सभी सा लाइन ते गड केर आहे हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो जी मुझे ख्याल में सिग्नल लता अचन मुझी आवाज बनी रही हूंदी उन जी आवाज अदेजी नथी अचे पर कोई गल नाहे असां हलायूं था हिकड़ो जबरदस्त ट्रैक न रहंदे तू न रहंदुसि मां इन हिट नंबर खे ॿुधो ऐं अशफाक नियाज़ी सां गॾु रहो पंहिंजे शो आई लव यू ऑल में।

0: It's 6:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Sindh ke maathe ka jhumar.
0: DFM 88 Network.
3: Sindh ki awaaz.
1: Sona, sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत और जवाबित लागू हैं।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: मातली आस पास की अवाम लाए खुशखबरी। मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
6: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

तो आज से आगाज करें, क्योंकि छोटा कदम भी कदम होता है। तो इस छोटे से कदम को आप जरूर बढ़ाइए। आइए आज सिर्फ ये ना कहें कि कायदे आजम हमारे अजीम रहनुमा थे, बल्कि अपने अमल से ये साबित करें कि हम उनके ख्वाब के पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कायदे आजम को खराज अकीदत का बेहतरीन तरीका दोस्तों यही है कि हम ईमानदारी, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त और जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका अपना मेजबान अशफाक नियाज़ी और आप सुन रहे थे खुसूसी आज का प्रोग्राम आई लव यू ऑल। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा हमेशा हमेशा सलामत रखे, अमन दे, तरक्की दे और खुशहाल रखे। और हमारे साथ जितने भी लोग थे इस वक्त 5 बजे से लेकर इस वक्त तक, उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे प्रोग्राम में जनाब पार्टिसिपेट किया। तो इसी तरह हमारे हर प्रोग्राम में आप लोग पार्टिसिपेट करते रहें, हमें अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लगता है। और जनाब अपनी राय अपने तमाम प्रोग्राम्स के हवाले से, मेरे इस प्रोग्राम के हवाले से भी जरूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, ताकि हमें पता चले कि आपकी राय क्या कहती है, आप क्या कहते हैं हमारे शोज के बारे में, हमारे तमाम प्रोग्राम्स के बारे में। आप हमारे अपनी राय हमें जरूर दिया करें, चाहे वो आप कॉल करके दें, चाहे वो आप मैसेज के थ्रू दें, चाहे वो फेसबुक पे कमेंट्स करके दें। तो हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा कि आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा और इसमें कौन सी कमी कोताहियां हैं, इसमें क्या होना चाहिए, जरूर हमें आप बताइएगा। तो अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, अमन दे, तरक्की दे, खुशहाल रखे। आप सब हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम पाइंदाबाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और अपने पाकिस्तान से हमेशा मोहब्बत करते रहिएगा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है। आजादी की कदर कीजिए जो हमें बहुत मुश्किलों से मिली है, और वतन की तरक्की में जरूर अपना हिस्सा डालिए, क्योंकि जनाब वतन को हम सबकी जरूरत है, इत्तेहाद इत्तेफाक की जरूरत है और बहुत सारे साथ की जरूरत है। तो अपने साथ को हमेशा बनाए रखिए और अशफाक नियाज़ी के साथ भी रहिए, GFM88 के साथ भी रहिए। अब मैं चाहता हूं आपसे इजाजत, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह निगहबान।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: पानी बिजली वाली वजारत नाअहली है पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है. हेस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा अवाम के बुनियादी सहूलतूँ डेण में नाकाम थी चुका आहन. सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे थी. यो मसलो कौमी असेंबली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारे वे. रुगो बिजली न पर अवाम के गैस ए पानी जहा मसला भी दरपेश आन. स्पीकर बिजली कंपनीज के सरबराहन के घुराने की हिदायत कन्दे घरू वजीर के इन अमलदार न आया तो अवे तकलीफ दींदी.

0: महांगाई सटियल आवाम मथां अॼु बि पेट्रोल बम किराइण जूं तयारियूं। ईंदड़ टिन ॾींहनि लाइ डीज़ल 5 रुपया 28 पैसा ऐं पेट्रोल 5 रुपया 2 पैसा फी लीटर महांगो थियण जो इम्कान। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां अॼु राति 9 अघनि जो नोटिफिकेशन जारी थींदो। ज़रियनि जो चवण आहे त पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघनि जो तौइन सूमर ॾींहं ताईं लाइ कयो वेंदो।
1: डाउल हक ने आखिरी तरमीम में आईन को बदला, पर उसमें होता था कि नेशनल असेंबली सूबों की अगर उन्होंने बाउंड्रीज चेंज करनी है उसका कोई आईनी तरमीम से ही हो सकती है, उसके अलावा अगर ऐसी कोई आईनी तरमीम करनी है तो वो पास नहीं कर सकती जब तक सूबा उसके हक में उस डिवीजन के या जो भी हक में 2/3 एक्सेंट के साथ एक करारदाद पास न करे। ये पहले था, अब उन्होंने क्या कर दिया, कहा कि जी पास भले कर दे लेकिन सदर उस पर दस्तखत नहीं कर सकते जब तक 2/3 मेजोरिटी से कोई सूबा उस पर रेजोल्यूशन ना पास करे। मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी। ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इस आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे। ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए।
0: सूबनि जी सरहदुनि बाबति क़ौमी असेंबली आईनी तरमीम नथी करे सघे। तरमीम लाइ सूबाई असेंबलीअ मां 2/3 जी अक्सरियत ज़रूरी आहे। ज़ियाउल हक 8 तरमीम ज़रिए आईन खे तब्दील कयो हो जंहिंखे दुरुस्त थियण घुर्जे। सूबनि जी सरहदुनि में तब्दीली बाबति क़ौमी असेंबली तरमीम नथी करे सघे। सदर बि तरमीम ते सूबे जी मंज़ूरी बिना सही नथो करे सघे। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त जेकॾहिं क़ौमी असेंबली सिंध जे विरहाङे बाबति को ठहराउ मंज़ूर कयो त सिंध असेंबली पहिरें ई अहिड़ी ठहराउ खे रद्द करे चुकी आहे। सिंध जे माण्हुनि बि पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो ऐं असां सिंध जे अवाम सां गॾु बीठल आहियूं।

0: टारगेट किलिंग ऐं स्ट्रीट क्राइम में घटताई रेंजर्स जे कार्रवाई जो नतीजो आहे। पाबंदी मलियल तंज़ीमनि जूं सरगर्मियूं ऐं रूपोस जवाबदार सिक्योरिटी लाइ खतरो आहिनि। अमुन अमान अवाम जी जान ऐं माल जे तहफ़ुज़ लाइ रेंजर्स जी मौजूदगी तमामु ज़रूरी आहे। सिंध असेंबली रेंजर्स जे सूबे में मुक़ररी वारे मुदे में हिकु साल जे वाद जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। ठहराउ जे मतन में चयो वियो आहे त रेंजर्स पुलिस सां गॾु इंटेलिजेंस बुनियादनि ते थींदड़ ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कयो। सिंध में 20 जुलाई 2026 खां 20 जुलाई 2027 ताईं रेंजर्स मुक़ररु रहंदी। सिटी काउंसिल कराची सिंध में नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। मेंबर्स चयो त सिंध हिकु हुई, हिकु आहे ऐं सदाई हिकु ई रहंदी। ॿोली जे बुनियाद ते नफ़रतुनि खे हथी न ॾिनी वेंदी। कराची खे सूबो ठाहिण ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जूं ॻाल्हियूं कंदड़नि जो माज़ी लसानी बुनियादनि ते ॿधल आहे। जमात इस्लामी जे मेंबरनि जो ज़मीननि जे मामले ते एहतजाज। डेस्क ते बीहारे नारेबाज़ी। मेयर मुर्तज़ा वहाब ऐं डेप्टी मेयर सलमान अब्दुल अमराद इजलास छॾे रवाना थी विया। मुर्तज़ा वहाब जो चवण हो त ॿुधायो वञे त नूरुल हक़ इदारो कंहिंजी ज़मीन ते ठहियल आहे। हीअ उहा मुनाफ़िक़त आहे जंहिं ख़िलाफ़ आहियां। मुनाफ़िक़त खे वाइखो कयो वेंदो। पीटीआई जमियत उलमा इस्लाम खे 27 सेप्टेम्बर वरी लांग मार्च में शिरकत जी दावत ॾेई छॾी। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जी क़यादत में पीटीआई वफ़द जी जेयूएस सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात। 27 सेप्टेम्बर वरी मार्च कानून जी हुकमरानी आइन जी बालादस्ती ऐं तहरीक तहफ़ुज़ आइन पाकिस्तान पारां एपीसी कोठाइण ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। बैरिस्टर गोहर चयो त 27 सेप्टेम्बर वारो एहतजाज मुलतवी करण जी का बि तजवीज़ गौर हेठि नाहे ऐं नई वरी हुकूमत सां के ॻाल्हियूं थियूं आहिनि।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: केश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002960।

0: स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए बुड़ी 247-41-240।
0: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30-6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 03132525786।
1: जी हा, 2315-2575-786।
4: GFM रेडियो नेटवर्क,
1: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी, मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% ऐं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन, हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाए अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 03130863163।
3: केश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त केश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो,
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए,
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
9: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
9: जी हा, 2315525786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशख़बरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ़ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राब्ते लाइ अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
3: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
2: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खुशखबरी, मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-2525-786।
3: जी हा, 231-2525-786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
3: सिंध जो आवाज़।

0: It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
0: Sindh ka har chappa har gosha.
2: GAFM 88 network se juda.
0: GAFM 88 network. Sindh ki awaaz.
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GAFM 88 नेटवर्क ते।
4: मातली ऐं आसपास जी अवाम लाइ खु़शख़बरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्त मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइटर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 वॻे शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा, मेन हैदराबाद रोड, मातली। राबते लाइ अशोक कुमार, मोबाइल नंबर 0313086316।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 9 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मेजॉरिटी से कोई सुबह उस पे रेजोल्यूशन ना पास करे, मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरमीम थी. ये कैसे हो सकता है कि सूबाई असेंबली नेशनल असेंबली की पास किए हुए कानून को सूबाई असेंबली रिजेक्ट कर दे? ये तो जियाउल हक ने इसका आईन के अंदर ये अजीबो गरीब शिक डाल दी कि नेशनल असेंबली पास कर ले उसके बाद सूबा जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे. ये गलत है, मेरा ये ख्याल है कि इसको दुरुस्त होना चाहिए.
4: सूबन के सरहदन बाबत कौमी असेंबली आइनी तरमीम नथी करे सके. तरमीम लाए सूबाई असेंबली में ब भांगे टे की अक्सरियत जरूरी है. जियाउल हक अठी तरमीम जरिए आइन के तब्दील कयो हो जैंके दुरुस्त थियण घुर्जे. सूबन के सरहदन में तब्दीली बाबत कौमी असेंबली तरमीम नथी करे सके. सदर बे तरमीम ते सूबे की मंजूरी बिना सही नथो करे सके. कराची में मीडिया से गालाइंदे सिंध के वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह जो चवण हो तो जेकडे कौमी असेंबली सिंध के विरांगे बाबत को ठहराव मंजूर कयो तो सिंध असेंबली पहिरें ही अड़े ठहराव के रद्द कर चुकी है. सिंध के माण्हुनि भी पंहिंजो फैसलो बुधाए छॾियो आहे ऐं असां सिंध जी आवाम सां गॾु बीठल आहियूं. वज़ीर आज़म मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जो नोटिस वरतो. कंहिं बि इलाइक़े में ॿिनि कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न करण जी हिदायत. बिजली के लोड मैनेजमेंट से जायजा इजलास दौरान शहबाज शरीफ बिजली की लोड शेडिंग से कावड़ जो इजहार कंदे चयो तो कंहिं बि इलाइक़े में ॿिनि कलाकनि खां वधीक लोड शेडिंग न कई वञे. सिंध असेंबली के मेंबर्स जो सिंध में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग खिलाफ एहतजाज. स्पीकर अवेस कादर शाह समूरन बिजली कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के 23 सेप्टेंबर से कमेटी इजलास में घुराने की हिदायत कर छी. सीनियर वजीर शर्जील मेमन तो लोड शेडिंग पानी बिजली वजारत की नाअहली ए पाकिस्तान में गवर्नेंस की नाकामी जो आला तरीन मिसाल है. हेस्को सेपको ए के इलेक्ट्रिक जड़ा इदारा अवाम के बुनियादी सहूलतू डेण में नाकाम चुका. सिंध में 18 कलाक बिजली बंद कई वे यो मसलो कौमी असेंबली ए सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उथारे वे. रुगो बिजली न पर आवाम के गैस ए पानी जा मसला भी दरपेश आन. स्पीकर बिजली कंपनीज के सरबराहन के घुराने की हिदायत कंदे घरू वजीर के उनते अमल दरामंद अमलदार न आया तवा के तकलीफ डींदी. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यमनी हुसैन खिलाफ कार्रवाई करण वाली सऊदी अरब की दरख्वास्त रद्द कर छी. अमरीकी न्यूज वेबसाइट एग्जेविस मूजिब सऊदी वलीअद मोहम्मद बिन सलमान सदर डोनाल्ड ट्रंप से फोन से राबतो कर हुसैन खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त कई हुई जका ट्रंप रद्द कर छी. ट्रंप इंतजामिया मूजिब अमरीका रुगो सऊदी अरब के यमन में हदफन बाबत जान फराम कंदो. वॉशिंगटन जो हुसैन खिलाफ इन वक्त फौजी कार्रवाई जो इरादो न है. यमनी हुसैन पारा सामुंडी गुजरगाह बाबुल मदब ते कब्जो करण जी दावा. आलमी व्यापार में वडी रंडक पैदा थियण जो खदशो. यमनी हुसैन मूजिब बाबुल मदब वेझो अल अमीरी फौजी अडे ए जकर बेट ते कंट्रोल करे वरतो आहे. हाणे बाबुल मदब के बंद करण जो अख्तियार भी हुसैन वटि आहे.

अमरीकी सदर ईरान जंग पंज सदारती दौर में खत्म थियण लाइ पुरो में डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान जंग डिघे मुदे ताईं जारी रहण जो इम्कान आहे।

0: कोठाइण ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। बैरिस्टर गोहर चयो त 27 सेप्टेम्बर वारो एहतजाज मुल्तवी करण जी का बि तजवीज़ गौर हेठि नाहे ऐं न ई वरी हुकूमत सां के ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। एहतजाज जी क़यादत सुहेल आफरीदी कंदो, जंहिंमें सभु सियासी पार्टियूं शिरकत कंदियूं। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी सां बैकडोर चैनल ते राब्तो रहंदो आहे, तफ़सील नथा ॿुधाए सघजनि। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी जो चवण हो त मुलाक़ात दौरान नवनि सूबनि जे क़याम ऐं APC समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल थी आहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI जे 27 सेप्टेम्बर ते ऐलानियल लॉन्ग मार्च ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते ॿुधणी। एडवोकेट जनरल KP दरख़्वास्त जी मुखालफ़त करे छॾी। PTI ऐं KP जे वॾे वज़ीर खे धुर बणाइण जी इस्तदा। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो KP जे चीफ सेक्रेटरी ऐं IG खे हल्फी बयान जमा कराइण जो हुकुम।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
3: मातली ऐं आसपास जी आवाम लाइ खुशखबरी। मातली शहर जी पहिरीं होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली, जिते हर दवा अवां खे होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारनि लाइ 12% ऐं घरू सार्फिन लाइ हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वटि बर वक़्तु मौजूद न हूंदी, उहा ॿिए ॾींहुं घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सार्फ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा, उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग 9:30 to 6:30 शाम ताईं। नोट, असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस, मोहम्मदी फार्मेसी, नज़्द अली शेर कांटा कुमार। मोबाइल नंबर 03130863163।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 to 10:30 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: Twerk, Sintki Awaz.
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

चंड ते महफ़िल सजायो, दिल जी गाल करनी आ, रही न दूर तड़पायो, दिल जी गाल करनी आ। रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत ऐं सचाई, लबन ते मुर्का विखरल दिलन में आबे आई। चाहत जा चंग वजायो, दिल जी गाल करनी आ, चंड ते महफ़िल सजायो, दिल जी गाल करनी आ।

GFM नेटवर्क ए दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि प्रिय प्यारनि दिलरुबा दिलबर दोस्तनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदी। मुंहिंजो ऐं अव्हांजो साथ रहंदो हींअर खां राति 11 वॻे ताईं।

जॾहिं शाम पाछन खे वेढ़े छॾे, जॾहिं दर्द यादूं सहेड़े छॾे, जॾहिं शाम पाछन खे वेढ़े छॾे, जॾहिं दर्द यादूं सहेड़े छॾे, तॾहिं चंड खे तूं नियापो कजां, अञा हसरतनि जा ॾीआ था ॿरनि। जॾहिं शाम पाछन खे वेढ़े छॾे, जॾहिं दर्द यादूं सहेड़े छॾे, तॾहिं चंड खे तूं नियापो कजां, अञा हसरतनि जा ॾीआ था ॿरनि। अंदर खे आसरा अञा ताईं था रहनि, अंदर खे आसरा अञा ताईं था रहनि, असां वक़्त जी चीच नाहे छॾी, हली आओ जाना, ज़िंदगी एॾी नाहे वॾी।

वेलकम भलीकार दिल जी गाल प्रोग्राम संगत आबिद चौहान अवाजी खिदमत में हाजिर है अवासा खोड़ सारियों कचहरियों कबियों दिल जी गालियों कबियों उन सा गरोगर अवाजू फरमाइशों भी प्रोग्राम में शामिल कबियों असा अवाजी कॉल जो भी इंतजार कदाऊं अवाजू कॉल जो शिकायतों हुंदियों तो कॉल अटेंड नाहे कई वेंदी या तो कॉल अटेंड घट कई वेंदी आहे सो उन जो रिप्लाई यो ही आहे त असा पाण मुंतजर हुंदाऊं अवाजी कॉलिंग जा अवाजी कॉल खां बिना असा प्रोग्राम अधूरो आहे हा फकत असा अवासा पहिरें 15 मिंट मुखातिब थींदाऊं जंहिं में प्यार भरी पोएट्री अवां दोस्त बि उमाणे सघो था असांखे जेकॾहिं पंहिंजी पसंद जी चूंड पोएट्री या कुझु शायर दोस्त हज़रात जेकॾहिं ॿुधी रहिया आहिनि असां प्रोग्राम त उहो असांखे एस एम एस वसीले पिण जेको आहे त शायरी मोकिले सघनि था उन सां गॾोगॾु असांजे लाइव कॉल ते पाण बराह रास्त ख़ुदि जेको आहे त उहा पंहिंजी शायरी असांखे प्रोग्राम में शामिल करे सघनि था।

प्रोग्राम का आगाज एक खूबसूरत ट्रैक से करेंगे और वो ट्रैक है पाकिस्तान के जाने माने सिंगर अली जफर का और बहुत ही सुरूर दिल को छू लेने वाला ट्रैक। आओ मिलकर एंजॉय करें दिल की बात में अली जफर का खूबसूरत गीत।

जी दोस्तों, हीर वक्त आहे अवां जी कॉल्स अटेंड करण जो। बिल्कुल बेसब्री सा मुखे इंतजार हुंदो आहे अवां जी कॉल्स अटेंड करण लाइ। काफी दोस्त ट्राई अग में ही करे रहा हुंदा, त पो हीर रखा असा जो नंबर अवां के मिलंदो ऐं कॉल भी शामिल थींदी प्रोग्राम में। असां जो लाइव कॉलिंग नंबर आहे 03000113488।

बिना कहीं ताखीर जे असा कोशिश कंदासे वध खां वध आवाजू फोन कॉल्स शामिल कजन प्रोग्राम में सो कॉल अची रही है असा कॉल अटेंड कंदासे अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां हेलो हेलो हेलो केर साईं किथां खां हेलो

0: Hello. मदद कायम कॉल अटेंड कौन थी सही असा ये भी कॉल अच्छी रही है असा कोशिश कंदा से कॉल शामिल थी वने आवाजी कॉल असा लाए बेहद इंपॉर्टेंट हुंदी है अस्सलाम वालेकुम केयर साईं किथा खां हेलो हेलो हेलो मदर खाइम आवाज आवाज कौन पहुंचे कनेक्ट थियो मुझा भा
1: रबरिनो
0: फुलपोटो राजी गोट खैरपुर मीरस का वेलकम भलीकार खुशाबदीद प्यारा प्रोग्राम में
1: मेहरबानी
0: ठीक ठाक खैरियत जी चवण चाहिए का दिल की गाल को प्यार जो पैगाम अस प्रोग्राम में कोशिश कदाऊँ तो अवा जे दिल जो गालू को बुधऊं का नई गाल बुधऊं को नो पैगाम बुधऊं को पोएट्री बुधऊं शायरी जी वाह क्या बात है लाजवाब लाजवाब दोस्तन जा के नाम शामिल करण चाहिदो
1: बिल्कुल पंजाब साईं अगर मोहम्मद शेखा
0: जी
1: गुलाम हैदर प्रपोत्रा अली मोहम्मद बंदरा
0: जी
1: अभी सभी तरीन प्यारा जैसे बुधन लाए जैसे आवाज आने से सभी भेनर भाइरन के सलाम ऐं जलाल जो लाडो बुधाए जो
0: जलाल जो बुधाईंदा से गीत बुधाईंदा से
1: लाडो मेहरबानी सर
0: वरी वरी प्यारा कुर्ब लव यू लक लाइक
1: मेहरबानी

0: जी दोस्तों, मैक्सिमम कॉल्स अटेंड कंदा से अमा के असा मुसलसल वेट कराया से हियर अमा जो कॉल्स अचन पियो। अस्सलाम वालेकुम, के साई के था?
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। अदा के रदा
1: अब्दुल शकूर इंडर,
0: अब्दुल शकूर इंडर साहब के था पे गला पन्नो आकिल।
1: जी जी,
0: वेलकम भरी गार प्यारा,
1: मेहरबान रहे।
2: It's 9:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: Subah ki chai ya traffic ka jam, har pal fun GFM badalti life ki tragedy.
5: Yeah.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मातली आसपास की आवाम लाए खुशखबरी मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे डींदासीं घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुंचाई वेंदी राइडर के 50 रुपया खरीदार अदा कंदो टाइमिंग सुबह 9:30-6:30 शाम ताई नोट असां वट लूज गोरियों या कैप्सूल न मिलंदा एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163
0: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: अवन फोन कॉल्स असा के मजबूर कन थियो ट्रैक अस कंप्लीटली प्ले कौन कंदा से शामिल दोस्तों जी फरमाइशों भी थन्दी रहन अवा सा गल बोल भी थन्दी रहे अस गड कॉलर मौजूद है लाइन ते कॉल अटेंड कंदा से अस्सलाम वालेकुम केर अदा के था का वालेकुम सलाम यास्मीन आप कैसी हैं
1: अल्लाह का शुक्र आप
0: सुनाया ए वन आज आपने स्टार्टिंग में ही उर्दू पोएट्री सुनी होगी अगर प्रोग्राम आप शुरू से सुन रही हैं तो
1: जी हाँ बिल्कुल सुनी है
0: जी जी जी जी क्या कहना चाहिए
1: वो मेरी जो किसी में ना इसलिए मसला होता है काल में करती हूँ
0: अच्छा
1: मैं शुरू से सुन रही हूँ आपका तो हाँ
0: बड़ी मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया नवाजशें क्या कहना चाहिए
1: सिंधी भी मुझे समझ में आती है
0: सिंधी भी आती है समझ में
1: जी हाँ बिल्कुल
0: अच्छा जी तो सुना दें आज कुछ आज कुछ सुना दें कोई
1: सॉन्ग पर चला थोड़ा सा खबरनामा आ गया था बीच में
0: अच्छा आज कोई सुना दें हमें कोई सिंधी में शायरी या उर्दू में
1: आवाज अच्छी नहीं है भाई
0: शायरी के लिए गाना थोड़ी पड़ता है आप नसर में सुना दें ना नज़्म में ना सुना
1: है शेर सुनाते
0: जी
1: शेर
0: इरशाद
1: खिला ही रहता है हरदम गुलाब की सूरत
0: अच्छा
1: खिला ही रहता है हरदम गुलाब की सूरत
0: जी
1: आज आप कैसे मन की चीजों
0: है क्या बात है क्या कहने लाजवाब
1: और आज अताउल्ला ईसा खेलवी का सॉन्ग सुनाइएगा
0: आज अताउल्ला ईसा खेलवी का कौन सा ट्रैक सुनना चाहेंगे
1: आओ तो सही
0: प्रोग्राम सुनती रहे शामिल लाजमी करेंगे
1: आपकी आवाज़ अच्छी है अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे
0: बड़ी मेहरबानी नवाजशें थैंक यू
1: मेरी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम
0: वालेकुम सलाम थैंक यू बड़ी मेहरबानी
1: अल्लाह
0: अल्लाह
1: अल्लाह